0: दिन भर के कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जाए, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए किथों?
3: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
4: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
5: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड, त्रुगनीना, अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडीनॉन्ग। ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
6: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबर्न द्वारा अधिकृत।

दिन भर के कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जाए, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनों च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो, हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन अप्लाई।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
2: की होया,
1: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
3: रेडियो हाँ जी 1674 में एक ट्रैफिक दी अपडेट है जी। इस टाइम मनैश फ्रीवे दे उत्ते एक्सीडेंट होया वा, स्प्रिंगविल रोड दे उत्ते एक्सीडेंट होया वा मनैश फ्रीवे दे लागे, तो काफ़ी ट्रैफिक जाम दसी जा रही है। तो जेकर उधर नूं जा रहे हो तो जरूर इस चीज़ का तुसीं ख्याल रखियो, बाकी नैविगेशन ते भर लियो, काफ़ी चीज़ा उत्थों पता लग जांदियां ने। धन्नवाद तुहाडा जसप्रीत जी इस अपडेट दे लई, ते शुक्रिया तुहाडा। आपां थोड़ी देर दे विच वापस मिलदे हां भारतीय खबरां दे नाल।
4: चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय
5: स्टाइल डर लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलीगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
6: Smith's Lane by Mowak Vich, अपने भविख की शुरुआत करो। हुणे कदम चुको अते Smith's Lane दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है।
7: सोना चाहिदा,
8: भरोसा चाहिदा,
7: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
9: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990, ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लई है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस, कंडीशंस

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

डर लगता बाथरूम वैनिटी सिंपल जया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन फाटे घर नु बनाए एकदम क्लासी असि बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

हाले भी किसी भी हमलावर नूं गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक रात 9:30 एतवार के दिन जोहानसबर्ग के साउथ वैसट इलाका है वडेला उत्थे एक बार दे विच AK-47 राइफल ते पिस्टल्स दे नाल लैस 8 हमलावरां ने अन्नेवाह गोलियां चला दित्तियां। हमले दे विच पुरुष ते 4 औरतां मारे गए ते 15 लोग जख्मी हो गए। हमलावरां ने पहला बार दे बाहर गोलियां चलाईयां फिर अंदर जाके लोगों नूं निशाना बनाया। जांदे समय उन्हां ने लोगों के मोबाइल भी खोले गड्डियां दे विच फिर फरार हो गए। इस घटना तो करीब 4 घंटे बाद रात नूं फिर केपटाउन इलाके दे लवांटले इलाके दे विच इक स्टोर दे अंदर गोलीबारी हुई जिथे 10 जणियां दी जान चली गई। जिक्र योग है कि 5 दिन पहला भी डरबन दे विच इक पार्टी मनाई जा रही थी। इस पार्टी के दरमियान एक गर्भवती महिला सने 11 जने की मौत हो गई थी। तो वही खबर अस खबर के बुलेटिन के सवेर वेले तुहाडे नाल सांझी कीती सी। उत्थे अमरीका दे अमरीका तक हॉर्मोस स्ट्रेट क्योंकि हॉर्मोस स्ट्रेट हुण अमरीका का नहीं है पर अमरीका कहता था अपना ही है मध्य पूर्व के नाल जुड़िया हुई खबर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जल्द ही आत्म समर्पण कर देगा। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि जिवें ईरान आत्म समर्पण करेगा जंग खत्म तेल दीयां कीमतां थले आ जाणगियां ते फिर मौजां लुटे। इस दरमियान ईरान की IRGC ने एक अमरीकी पनडुब्बी नूं अपने कब्जे च लैण दा दावा किया। इस दे नाल जुड़ी एक वीडियो भी शेयर की अमरीका की तरफ तो पनडुब्बी के बारे हाले तक कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। वैसे भी अमरीका ईरान जिहड़े भी हमले करदा चाहे वह फौजी टिकाणियां ते होण चाहे ईरान अमरीका की जंगी व्यवस्था नूं बदहाल कर दिंदा उसके नाल जुड़ियां खबरां अमरीकी मीडिया नहीं दसांदा। जिहड़ा दसांदा है वह डोनाल्ड ट्रंप की नज़र दे विच फेक मीडिया हुंदा है। इस तों पहला ईरान ने दावा किया सी कि इस खेतर दे विच अमरीका की स्थिति चंगी नहीं है और फौजी हमला कर सकता है और इस सारे घटनाक्रम नूं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ तो ईरान नूं जिहड़ा दिता गया प्रस्ताव सी जो ईरान ने ठुकरा दिता ते उस तो बाद 24 घंटे दे अंदर अंदर सारियां घटनावां वापरियां ने। सो पिछले 24 घंटे जिहड़े ने ईरान दे लिहाज दे नाल दुनिया दे लिहाज दे नाल काफी महत्वपूर्ण रहे ने ते अगले 48 घंटे होर भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान के चलियो क्योंकि बड़ा हो जा रहा। जो पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने एक संकेत दे दिता सी ट्रंप ने ईरान दे हॉर्मोस स्ट्रेट नूं फिर तो खोलन दा प्रस्ताव भी खारज कर दिता। एतवार दे दिन उन्होंने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि मैं उस प्रस्ताव नूं खारज करदा क्योंकि ईरान तो बुरी तरह के नाकाम हो चुके हैं इसलिए हॉर्मोस स्ट्रेट तो उन्होंने खोलना ही पड़ेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस पत्रकारों को कहा कि ईरान का प्रस्ताव इस करके स्वीकार योग नहीं है क्योंकि उन्होंने तेहरान 7 दिन के अंदर अंदर व्यापारक जहाज लंघते रहन हॉर्मोस स्ट्रेट के यह हदायत दी सी कि 7 दिन का समा दें पर उन्होंने नहीं किया हूँ वह बुरी तरह के नाल हार चुके हैं। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अणजाण अमरीकी अधिकारी का हवाला देंदे हुए यह भी खबर दसी कि डोनाल्ड ट्रंप नूं उम्मीद है कि मिड टर्म इलेक्शन तो बाद ईरान दे उत्ते हमले फिर तो शुरू कर दिते जाणगे। बहुत सारे अमरीका दे विच वास्ते लोग जिहड़े अमरीकी नागरिक ने अमरीकी जिहड़े सिटीजन ने उन्हां दा मानना यह है कि अमरीका ईरान दे विच बेफजूल जंग दे उत्ते बेफजूल पैसे खर्च कर रहे हैं इस करके मिड टर्म इलेक्शन दे उत्ते उसके असर देख सकते हैं। वैसे मिड टर्म इलेक्शन दे नाल जुड़ी एक विस्तार रिपोर्ट असी पिछले हफ्ते तुहाडे नाल खबरां दे सैगमेंट दे विच दसी सी कि क्यों इन्नियां अहम हुंदियां ने। राष्ट्रपति तो नहीं चुनिया जाता पर राष्ट्रपति चुनण तक की राह जिहड़ी है वह मिड टर्म इलेक्शन दे विचों ही होके लंघदी अलग अलग सूबियां दे गवर्नर चुने जाते हैं ते गांह चल के गवर्नर ने ही फैसला लेना हुंदा है कि उन्हां दा नेता कैसा हो डोनाल्ड ट्रंप वर्गा हो या ना हो। खैर इधर IRGC दी नेवी ब्रांच का यह कहना है कि बड़े ही एडवांस्ड ड्रोन्स दी मदद दे नाल ते खुफिया जानकारी हासिल करके उन्होंने अमरीकी फौज नूं फसा लिया ते उन्हां दी एक पनडुब्बी नूं फड़ लिया सबमरीन। खबर यह भी है IRGC ने अपने नेवी दे हवाले दे नाल यह बयान दिते ने अलग अलग मीडिया अदारियां नूं कि यह रिमोट दे नाल चलदी मनुख रहत पनडुब्बी रेम्स 600 नाम की यह स्मार्ट पनडुब्बियां दे विचों इक सी। इस दे बारे ज्यादा जानकारी जिहड़ी उह माहरां ने हासिल कीती रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पानी दे विचों एक पनडुब्बी नूं बाहर कढ़दिआं होइआं भी दिखाया इहदा एक वीडियो भी जारी कीता है ते अपनी इस गल दे उत्ते फिर तो जोर दिता है कि हॉर्मोस स्ट्रेट बंद है। बिल्कुल उस तो उल्ट बयान जो हुण तो थोड़ी देर पहला अमरीकी राष्ट्रपति कह चुके ने कि हॉर्मोस स्ट्रेट खुला है ते उह समझौता करन लई तैयार ने उह मतलब ईरान जदके ईरान कहिंदा है कि हॉर्मोस स्ट्रेट बंद है अमरीका दी इन्नी मजा ली कित्थों कि इत्थों अपनी कोई पनडुब्बी भी कढ के दिखावे। ईरान दे इक फौजी बुलारे दा भी कहना है कि अमरीका दी स्थिति हुण चंगी नहीं रही अमरीका बखलाहट दे विच हमला कर सकता है बड़ा हमला कर सकता है पर ईरान भी तैयार है। इस तो पहला ईरान दे फौज दे एक सीनियर बुलारे ने चेतावनी दी थी कि जेकर हॉर्मोस स्ट्रेट नूं लैके अमरीका ने कोई

फिल्म तो ठीक ठाक जी सी, पता नहीं बढ़िया है नहीं कह नहीं सकते, आई कांट, मैं देखनी भी नहीं। फिल्म सी जी सिमी चाल दी ते मैंडी तखड़ दी ते उहदे चो ही इह गाना, आई डोंट नो किहदे चो हैगा इह गाना, टुट पैणी इंग्लिश ते गाने वैसे ठीक ठीक जी सी, कोई अड्डा हाँ पता नहीं केड़ा गा कह जा गाना है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।
1: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
2: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिकृत।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप, टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: Hippie.
1: Hooray.
0: Hippie.
1: Hooray.
0: Hippie. हाँ जी, हैप्पी बर्थडे भाई। की विश करोगे पापा ली फिर?
1: बर्थडे पापा दे चीजां लग
0: रहा है बर्थडे ताडा वा
2: पापा दा ही
0: चल बहुत बहुत बधाइयां। की पापा दा नाम किया?
3: सरदार अश्विंदर सिंह।
0: सरदार अश्विंदर सिंह जी तुहानू बहुत बहुत बधाइयां, तंदरुस्ती दवे रब, चढ़दी कला दे विच रखे ते इसे तरह तुसी खूब तंदरुस्तियां माणो, बहुत वधिया वधिया तुहाडा ए वरा रवे, बहुत बधाइयां तुहानू।
2: थैंक यू।
0: ते की सुनाऊंगी आ फिर कुड़ियो?
3: आज मैं एक चुटकुला सुनाऊंगी।
0: ओके।
1: हां जी।
3: एक बारी दो सहेलियां हुंदियां ने, ते पहली सहेली पुछदी है कि तू रो क्यों रही है, ते ओ कहंदी है कि मेरे पिंड दा बाबा तुर गया। ठीक है। ते फिर दूजी सहेली पुछदी है कि तू क्यों रोन रही है, ते ओ कहंदी है कि मेरी मुर्गी मर गई। दूजी सहेली कहंदी कि इहदे च रोण वाली की गल है, ते पहली सहेली कहंदी कि मेरी मुर्गी तां अंडे दिंदी सी, ताडा बाबा थोड़ा दिंदा सी।
0: हां वी ओ की दिंदा ही, तुही क्यों रोंदे हो?
1: अंडे खांदा सी।
0: थैंक यू। हरगुण तुसी की सुनाओगे?
2: मैं एक कविता।
0: ओके गुड।
1: हां जी।
2: अपने रंग विच जियो। एक दिन मैं सोचिया बैठ के लोक मेरे बारे की कहंदे ने, फिर दिल ने हस के आख्या पहला एक ते दस लोक कहंदे किन्ने ने। कोई कहंदा ए ना कर, कोई कहंदा ओ ना कर, मैं पुछिया फिर करा की, कहंदे साडी गल मन्या कर। कदे कोई दी हसी वेख के आखे इन्ना क्यों हसदा है, मैं क्या जिंदगी छोटी जई है, रोके भी ता नहीं लंगदा है। किसे कोल पैसा वद होवे, किसे कोल नाम ते शान, किसे कोल वड्डा कर होवे, किसे कोल सिर्फ वड्डे अरमान। जे लोग तेरे सुपने उत्ते हसन, ता तू भी हस के रह जाई, अज जे ओ तेनू ना समझन, कल अपनी कहानी आप सुनाई। हर बंदा अपने राह दा राही, हर एक दी अपनी कहानी, इसे नाल अपनी तुलना ना करी, तो अपने आप विच है रानी। जिंदगी विच रंग बहुत ने, कदे चंगे कदे थोड़े माड़े, पर जे हौसला दिल विच जिउंदा होवे ता रस्ते बन जांदे ने सारे। इस लई लोकां दीआं गल्लां छड्डो, अपने दिल दी सुणदे रहो, जिवें हो बिलकुल ओवे रहो, अपने रंग विच जियो, हसदे रहो ते अगे वधदे रहो।
0: वाह वेरी नाइस,
1: बहुत सोहणी
0: है। हां ते बहुत वधिया ही।
2: थैंक यू।
0: ये कित्थों सिखदे हो?
2: पापा तो।
0: अच्छा पापा लब के देंदे आ?
2: हां जी।
0: ओके गुड। मैं लगा पंजाबी स्कूल तो सिख दे हो।
2: नहीं मैं नो आंदी है पंजाबी, मैं नहीं जांदी ना हट जांदी है।
0: ओके ओके ओके गुड गुड गुड। अच्छा तानू सारी आ गई है?
2: हां जी।
0: ओ वाह वेरी नाइस, तुम तो बड़ी छेती सीख लिया। थैंक यू पुत्र।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू।
0: थैंक यू। थैंक यू। तुहाडा दिन वधिया वधिया रहे, ते तुसी भी कर सकते हो भाई कॉल, हुण बच्चे आ तो बाद वड्डियां दी जे तमन्ना ते कर सकते हो तुसी, सारे कोल थोड़ा जा हैगा टाइम। ते राकेश जी कहिंदे ने कि अज वैस्टर्न आस्ट्रेलिया दे विच किंग दा बर्थडे। चलो बहुत बहुत वधाइयां भी तुहानू, खाओ तुसी केक। सत श्रीकाल सरबत दे भले दी अरदास, ते कहिंदे कि चंगी सेहत तंदरुस्ती ते चढ़दी कला दी अरदास करदे आ। हर पासे ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਸੀਜਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਲ ਨੂੰ ਖੰਡ ਲਾ ਦੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਖੰਡ ਲਾ ਦੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਭਾਈ। ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਪਸ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੂਲਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 187 ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਬੈਰਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਵੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: the number one radio station. Radio Hanji. Radio Hanji.
1: सोना चाहिदा
2: परोसा चाहिदा
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
3: वाओ तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मैनु भी दस दे सीक्रेट
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
1: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या अज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
5: लादे फेरा

0: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हूँ नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन अप्लाई
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
3: Smith's Lane by Mowak विच अपने भविष्य दी शुरुआत करो हुणे कदम चुको अते Smith's Lane दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय लई मिलण वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है
4: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India, ya Pakistan. Sydney to India, ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
5: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo. 1300-533-311 te. Ya online book karo. hifitravels.com.au te.

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
2: चलदी दा नाम गड्डी, हाते सुनिया ही होना। तुहाड़ी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउन लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स लई याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाड़ी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tyrefors.com.au।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
4: क्या आप सोलर की सर्विसिंग के लिए फोन करने के बजाय घर में आग लगने का जोखिम उठाएंगे? अपने सोलर पैनल्स को अच्छी स्थिति में रखकर आप बिजली के कारण घर में आग लगने के खतरे को टाल सकेंगे तथा और भी अधिक प्रभावशाली सिस्टम के लाभों का आनंद उठाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में 2 साल या उससे भी पहले से सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो जोखिम ना उठाएं, सोलर सुरक्षित रहें। लाइसेंस धारक ई ग्रेड इलेक्ट्रीशियन से अपने सोलर की सर्विसिंग करवाएं और अधिक जानने के लिए energysafe.vic.gov.au पर जाएं। एनर्जी सेफ हमेशा, विक्टोरियाई सरकार, मेलबर्न द्वारा अधिक।
5: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 20 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है।
6: Attention please, दिल के अंदर एक कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो Hi-Fi Travel से, your local travel agency, rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 से या online book करो hifitravels.com.au से.
7: Experience Cook Studio.

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सब का अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिकृत।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। हम थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, the smart choice.

0: आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
1: ओपाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए किथों?
2: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
5: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। तुहाड़ी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउन लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाड़ी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमार्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
6: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: Oh,

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
4: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।

0: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
0: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
0: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तो आड़े नाल।

पहले इसकी ट्रांसलेशन कर दूं। उनके जमाले रुख पे, उनके रोशन चेहरे पे, जमाले रुख रोशन चेहरा, उनके जमाले रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके रोशन चेहरे पे।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: On Roads Honor Campaign सिर्फ सीमित समय लई, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लई है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD On Roads On Us, conditions apply।
3: हां जी हां जी,

मेरा उनका साथ रहा है कुछ 40 साल से। जलंधर रेडियो पे थे वो, मैं वहां से गाता था। फिर यहाँ आके मैंने उनका एक फर्स्ट एल्बम एक ही शहर का जो होता है वो फाकिर साहब का था, उसी में से ये नज़्म है।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है।
2: Attention, please. दिल कहता है कर जाना है। Flight search करके थक गए। Switch करो Hi-Fi Travel से। Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 से या online book करो hifitravels.com.au से।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: साडा

जो तुद पावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे छंतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग।

है न लंब है असम है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मितपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्षक आदि श्रेतरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बे अब है के गैबल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलामे सली खुदमदामे गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आदरूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ,

गण मुदाम हर बार अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रगास गुणगण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्विस अभंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनभव अनाश त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ धर्म अत पीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है तृत के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कल गायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कृताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंग शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की धार बछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पोत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वमर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे जम्फास भरेंगे। जे नर श्रीपत के

0: लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पुत्रियो सिर कहूं ले गले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा नज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारियै चुन चुन सत्र हमारे मारियै आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख लो।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सा पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सभी ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो संकर्या कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर

0: गुरु जी की फतेह।
1: जुग जुग अटल चवर शत्र तख्त दे मालिक, परमेश्वर दा हिरदा स्वरूप सतगुरु तन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच महान पवित्र मुकद्दस स्थान पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे पातशाह जी दी हजूरी विच जुड़ मिल बैठ गुरु जस आसा की वार दी पावन पवित्र बाणी दे राही आप जी ने सरवण किता है। आप जी समूह संगतां वड भागे हो जिन्हां दे उत्ते सोधी सुल्तान पातशाह धन गुरु रामदास साहिब जी ने अपार रहमत बख्शिश कीती है। जिथे पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन दिदारे करन दा सुभाग प्राप्त होया, उत्थे अमृत सरोवर विच इशनान कर आप जी ने सतगुरु पातशाह जी दी खुशी महरामत प्राप्त कीती है। ओ सत संगत जी, इस पावन स्थान तो जो निता परती सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो आए, पावन श्री मुखवाक जी दी विचार समुचा सिख जगत गुरु नानक नाम लेवा सिख सरवण कर दे, तो विचार लई अपा गुरु पातशाह जी दी खजूरी विच एकत्र होए बैठे हां। सतगुरु रहमत करन जिथे तन सुनदा है ए मन सुनन लग जावे। मन दा सुनना बहुत लाजमी है, मन ने ही फिर तन नूं शिंगारना कै तन नूं समझाउणा कै। संगत गुरु दा शब्द गुरु दा ज्ञान साडे जीवन नूं सवार देंदा है। कि बेनती करां, साडे अंदर शिंगारण दी ताकत है, साडे कोले सवारण दी ताकत नहीं है। माता मां भैणां बैठियां ने घर दे विच, ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਦੀ

नाम निर्मोलक हीरा आत्मक जीवन देन वाला परमात्मा दा नाम निर्मोलक हीरा क्या पातशाह जी ने जिदा कोई मुल नहीं पै सकता नाम नहीं खरीदया जा सकता और बहुत कुछ ते भी कह देना जिन्होंने जपया वह भी नहीं खरीदे जा सकते जे नहीं जपया तो वह तो साधु संगत विकते ने टकिया के भाव मैनू माफ करना अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारीए अमुल भंडार अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी कहते गुरु ने यह मंत्र दिता है मंतानी का अर्थ मननी गुरु को मंत्र मिले थोड़े को जे ये मंत्र है ना तुहानू होर किसी मंत्र की लोड़ ही नहीं है ध्यान रखना अपने जीवन विच तुहानू याद होगा ना जी हजूर साहब की पावन धरती ते हर एक दे पलंग नू जिहड़ा भी उहदे पलंग ते बैठदा सी ना माधोदास बैरागी दे बाबा बंदा सिंह बहादुर मुद्दा मार दिंदा सी पहली गल ते डेरे विच नहीं वड़ सकदा सी कोई अज कलगी धर पातशाह बैठे उहदे चेलियां शिकायत कीती कोई आया कहे तुहाडे डेरे नू सांभ लिया है कहिंदे मैं इत्थों ही ताकत भेजदा वां मैं इत्थों ही ताकत भेजदा हुणे मंजा पलंग मुठा मार दिंदा सारिया ताकतां लातियां आके चरणा विच ढठे उह सारी वारता तुसी तू कौन कहे मैं तुहाडा बंदा इको एक गल पुछी कहिंदे अज मेरे सारे दे सारे मंत्र फेल हो गए तुहाडे कोले किहड़ा मंत्र सी कलगीधर पातशाह जी ने कहा साडे कोले मूल मंत्र है साडे कोले गुर मंत्र है अज असी मूल मंत्र भी छड़ता सी गुर मंत्र भी छड़ता और मंत्र तेरे सिखा दियां दुकानां विच मैं लाइना खिंचिया हुईयां वेखियां तपीत बाबे ने दिता जी ए रुजगार वधाऊगा घटो घट सिखा ए ते पढ़ना सी खाल खाए किच हथों दे उदम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पहुंच तेरा व्यापार इदां वधना है ऐनी जे वधना पता नहीं कित्थों भटकना पैगी अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी कहिंदे मैनू गुरु ने सब तो वड्डा इह मंत्र दित्ता है ते साडे सारिआं दे कोल इह मंत्र वड्डे वड्डे फेल हो गए कोई जादू कोई मंत्र कोई तंत्र नहीं चलदा इस मंत्र क्यों मूल मंत्र है सारी सृष्टि दे मूल परमात्मा दा नाम है फिर भी नहीं असीं समझे जे नहीं समझे तो फिर भटकना साडी है सतगुरु ने ते दिता है ताई दाता जी ने कहा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे तंत मंत ना जो हई तित चाख ना लागे सतगुरु कहंदे कोई नजर नहीं कोई चंत्र नहीं कोई मंत्र नहीं अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी मैनू गुरु कोलो परमात्मा दा नाम रूपी

0: सतगुरु आखदे भाई मेरे उत्ते गुरु ने कृपा कीती है, रहमत कीती है, नहीं चल घर बन दे, मेनू अंतर आत्मे हिरदे दे विच इदां टका दिता है कि हुण मन डोलदा नहीं, हुण मन ए नहीं कहिंदा ओ मेरा कुछ सवार देगा, ओदे कोल मेनू कुछ मिल जाएगा, उन्हें मेरा कुछ बना देना है। दाता जी कहिंदे भटकना ही निकल गई। सच्ची जो समझ आवेगा ना जी, ए समझ गुरु दे कोलों ही मिलती है। बंधन तोर पए निरवैर, अनदिन पूजे गुर के पैर, कहो नानक नहीं चल घर बांधे हो। दाता जी कहिंदे गुर कियो बंधा नहीं, ए घर पता किवें बनता है। मैं उदाहरण दे के फिर अपन लड़ीवार शब्द विचारना है। भगत नामदेव जी का एक बचन है, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान छबाई को, तो पै दूनी मजूरी देखो मुंह को बेटी देहो बताए को। चलो ओदी गल कई ने करती जी, भगत नामदेव जी की छपरी जेड़ी है वह रब ने बनाती, असल दे विच आत्मक अवस्था सी, तेनू मंदिर चो कढ़ता तू फिर पिछले पासे बह के रब का नाम जपया, तू डोलिया नहीं, ये तेरी अवस्था किवें बनी है, तेरे नालों मैं वध पैसे दवांगी मैनू भी एहो जी अवस्था मिल जावे। भगत नामदेव जी पता की कहिंदे, री बाई बेटी देन ना जाई, कहिंदे ओह पैसियां नाल नहीं मिलता, बेटी प्रीत मजूरी मांगे जे को छान छवावे को, ओह पैसे नहीं लैंदा, ओनू प्रेम चाहिदा। जिस दिन प्रेम नाल तुसी गुरु नाल जुड़ जोगे, फिर सात संगत भावे सारी भारत की फौज चढ़ के आ जाए, फिर भी योध्या ने छाती डाक के सामने तो टाकरा किया है। जो प्रेम करोगे तो मैनू माफ करना, जिन्हों का प्रेम नहीं सीगा। मैं हुण फिर उस गल वलू आवा, उन्हां दियां अखां भी चुकिया ते हाथ भी खड़े करके मैं माफी चाहना, पर सच है, बेटी प्रीत मजूरी मांगे जे को छान छवावे को। दाता जी कहिंदे जे ओहदे कोलो चाहिदा है ना, लोग कुटुंब सबू ते तोरे तो आपन बेटी आवेगो। लोकां दी परवाह, लोग की कहंदे ने, कहंदे सब कुछ छड़ना पैना, फिर कहो नानक ने चल घर बांधो गुर कियो बंदा नहीं, फिर तेरा अंदर एहो जा पक्का होवेगा दुनिया दी कोई ताकत ओनू नहीं डुला सकती। सतगुरु पातशाह जी रहमत करन, जिसने तन दिता मन दिता, असी भी उस मालक वल नू चलीए, उस दाते वल, उस सतगुरु वल चलीए, उन्हें ही साड़ी पालना, उन्हें ही साड़ी बख्शिश ते रहमत उदे कोलो ही मिल सकती है। आओ लड़ीवार शब्द जो पावन स्थान ते सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करदे ने, भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया, उस श्रवण करिए जी।
1: कि नहीं बन जया कांसी तांबा, कि नहीं लौंग सुपारी।
0: भगत कबीर साहब जी कहंदे दुनिया दे अंदर बड़े व्यापारी बैठे ने, किन ही बन जया कांसी तांबा, कोई कहदा व्यापार करदा है, कोई तांबे दा, कोई लौंग बेचदा है, कोई सुपारी बेचदा है। ए नहीं के गुरमत ने सानू व्यापार करन तो मना किता, नहीं जी, सतगुरु ने नहीं मना किता, पर गुरु नानक दे घर ने समझाया सानू, सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख। कहिंदे जिवें दुकान दे भांड्यां दे विच किसे विच दाल रखी, किसे दे विच आटा रखिया, किथे हल्दी रखी ना, इसी तरह अपनी सुरत रूपी भांडे दे विच परमात्मा दा नाम भी रखना है। किन ही बन जिया कांसी तांबा, किन ही लौंग सुपारी। भगत कहिंदे, भगत साहिब जी कह रहे ने, कोई कांसी दा व्यापार करदा है, कोई तांबे दा ते कोई लौंग ते सुपारी।

आखदे ने भाई दुनिया दे लोगो संत जनो मेरी गल सुनो कहत कबीर सुनो रे संतो निभी खेप खमारी आ जे तुसी कठा किता फिर ते तुहाडा ए प्रमाण कोवेगा बाकी जो कुछ कठा किता है ना जी मैं ते एक गल कहना साध संगत समय बड़ी वड्डी ताकत रखता है न्यूज़ पेपर ते आउंदा ना जी तुहाडे घरे सवेरे जदो आउंदा ना 5-6 रुपये मैनू नहीं पता उहदी किन्नी क कीमत हुंदी है वध भी गई होवे शायद 10 तक भी होवेगी जदो सवेरे आउंदा है उहदी कीमत इन्नी है सवेर तो बाद शाम नूं उही 10 रुपये किलो रद्दी दे विच विकदा है इह ध्यान रखना समय बड़ा कीमती है बचा लईए आपां इहनूं ते सिख दे जीवन दे विच समय दी ते बड़ी वड्डी महानता है दाता जी कहिंदे तेरे कोले समां कै नाम रूपी लाहा खट नाम रूपी बंदगी रूपी लाहा है जिहड़ा ओह अपने जीवन दे विच तू अपने जीवन दे विच नाम रूपी लाहा जिहड़ा है ओह एकत्र करना कर नहीं ते की होवेगा कहत कबीर सुनो रे संतो निभी खेप हमारी जे ते तेरे कोले एक है फिर ते प्रवान हो जाएगा जे नहीं है ते फिर भटक जाएगा अज जो कुछ आपां इकट्ठा करदे पए आ उहदा रिजल्ट ते तुसीं जाणदे हो ना सारे जी कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर एक बचन मैनू चेते आ कबीर हर सो हीरा छाड कै कहिंदे जिहड़े नाम रूपी हीरा छड कै करहै आन की आस धन मेरे नाल निभूगा पैसा निभ जूगा आ मिल जूगा करहै आन की आस ते नर दोजख जाहेंगे सत पाख है रविदास भगत कबीर साहब जी का श्लोक है भगत रविदास जी दे राही कह रहे ने कहिंदे भगत रविदास साहब जी ये गल कह रहे ने जेडे नाम रूपी घीरा छड के संसार दे पदार्था तो आस रखणगे ना दाता जी कहिंदे ने ओ फिर नरकां दे भागी बणनगे अज दोवें शब्द भावें लड़ी वार भावें श्री मुखवाग एक गल ते सानू समझा दित्ती उत्थे सतगुरु ने कहा अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी इत्थे पातशाह जी ने कहा भगत कबीर साहब जी दे राही के हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी मैं बेनती करा जी बहुता नहीं भावे 15 मिनट तो शुरू करिए अज बड़ा डिप्रेशन है क्यों असी पता एक गल छड़ दित्ती है मेडिटेशन छड़ दित्ता डिप्रेशन अपने आप होवेगा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਲ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 2-2.5-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮੰਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ समझ लेना साध संगत वे प्रवाह हो गया वे प्रवाह हो गया वह नहीं भटकदा अज साडी परेशानी एक है असी नाम तो टुट गए अज मन लेना कल मन लेना 2 दिन बाद 10 साल बाद नानक के घर केवल नाम एदे तो बिना प्रवानगी नहीं होनी गुरु रामदास साहब जी दे दर ते बैठे हो सतगुरु ने पहला हुक्म ही यह किया है केड़ा जी गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे जपया करो कुछ नहीं जानदा सोची पई रसना नाम कहत गोविंद का उठत बैठत सोवत ते आई है सतगुरु रहमत करन असी इस सच नु समझ सकीए कोटान कोट शुकराना सोडी सुल्तान पातशाह धन गुरु रामदास साहब जी दा समूह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा सिंह साहब जी दा भाई साहब होना दा जिन्हां ने बड़े प्यार नाल सरवण कराया सतगुरु पातशाह जी अपने चरणा नाल जोड़ के सेवा लैंदे रहन आओ संपूर्णता दियां पंक्तियां पढ़ के जी फिर समाप्ति है जी।

कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मित्रों, हम सब चाहते हैं हर कोई हमसे प्रेम करे, हमारा सम्मान करे, हमसे कभी ठगी ना करे, कोई बात छिपाए नहीं, जरूरत पड़ने पर कोई हमारा साथ अवश्य दे। ऐसा हो जाए तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए, है ना? किंतु ऐसा आजकल कलयुग में हो पाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? इसी का कारण पता करने का प्रयास करते हैं आज के पुण्य दर्शन में, इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: टूट पैनी इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा करांते विच 25 सितंबर 2026 नो।
5: है पुत, पहला मैंने अंग्रेजी बोल के दिखा।
6: I have many cow, but favorite best cow Lali. He have 4 leg, 2 ear, 2 eye. Very good, she very fast cow.
5: हूँ मेरी जेठानी नू पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ।
7: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
6: ना पुत, इंसान नू परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है।
8: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। मित्रों, दूसरों के साथ वही व्यवहार कीजिए जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं। किसी का हक मारकर, किसी को कम देकर, ठगी मारकर, झूठ बोलकर या चालाकी करके हम शायद कुछ समय के लिए थोड़ा आनंद ले सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं या अपना काम निकाल सकते हैं, किंतु हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य आता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक दुकानदार था और रोज भोला नाम का एक किसान उसकी दुकान पर आता, 1 किलो मक्खन देकर पैसे ले लेता। कई साल तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन दुकानदार के मन में विचार आया कि जो किसान है भोला, वो मक्खन मुझे आज कम लग रहा है, 1 किलो नहीं लग रहा है। अगले दिन उसने मक्खन का वजन किया तो सिर्फ 900 ग्राम निकला। दुकानदार के होश उड़ गए, इतने सालों से वो 900 ग्राम मक्खन ले रहा है 1 किलो के दाम में। वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई और भोले किसान को भी बुलाया गया। पंचायत ने जब भोले से पूछा कि वह मक्खन दुकानदार को कम क्यों देता है जबकि तुम्हें पूरे 1 किलो मक्खन के पैसे दुकानदार देता है, फिर भी तुम 900 ग्राम मक्खन उसे देते हो और ये सिलसिला कब से जारी है? किसान ने कहा, सरपंच जी, मैं तो बड़ा गरीब सा किसान हूं, मेरे पास ये तोल बाटे वाला सिस्टम नहीं है। मैं रोज जितना मक्खन निकालता हूं पूरा का पूरा दुकानदार को दे देता हूं। सरपंच ने पूछा कि तुम इसे तोलते कैसे हो? उसने कहा कि मैं रोज दुकानदार से 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी 1 किलो गेहूं को तराजू के एक पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े पर उतना ही माखन मैं तोल कर दुकानदार को दे देता हूं। ऐसा मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूं। यकीन मानिए, मैं उससे कम बिल्कुल भी नहीं देता। इतना सुनते ही दुकानदार के रंग उड़ गए और पंचायत के सामने सच्चाई सामने आ गई। दुकानदार दूसरों को धोखा देकर जो लाभ लेना चाहता था या जो मुनाफा ले रहा था वही उसके सामने वापस आ गया। हमें इससे क्या सीख मिलती है, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

0: स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
0: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
0: Overseas release by Zee Studios.
4: टुट पैने इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नूं।
5: है पुत, पहला मैंने अंग्रेजी बोल के दिखा।
6: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली। ही हैव फोर लेग, टू ईयर, टू आई, वेरी गुड, शी वेरी फास्ट काओ।
5: हुण मेरी जठानी नु पता लगू कि साडे घर भी अंग्रेजी आ गई।
7: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
8: ना पुत, इंसान नु परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है।
9: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नु 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो दुकानदार और किसान का न्याय तो हो गया, किंतु इस कहानी से जो सीख मिलती है उसे अपने साथ लेकर जरूर जाइएगा। सोचिए, वह दुकानदार ने गरीब किसान की ईमानदारी पर शक किया, किंतु स्वयं ईमानदारी से व्यवहार ना करने के कारण उसे भरी पंचायत में अपनी चालाकी का भांडा फूटते देखना पड़ा। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा समझकर उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। सामने वाला कितना ही साधारण क्यों ना हो, हमारे संस्कारों को दिखाता है। आज की सीख यही है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं। किसी का हक मारकर, किसी को कम देकर, झूठ बोलकर, चालाकी करके हम शायद कुछ समय के लिए लाभ ले लें, किंतु हमारे कर्मों का प्रभाव अवश्य हमारे जीवन पर पड़ता है और उसका असर दिखता है। क्योंकि दुनिया से हम चालाकी छिपा सकते हैं, किंतु भगवान से नहीं, अपने कर्म फलों से नहीं। अपने कर्मों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: दूरदर्शन
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट
2: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
3: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावत एंड मेनी मोर
4: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: Because the story has not been finished yet. The last part is left.
1: Overseas release by Zee Studios.
5: Tut Penny English ne. Dekho apni nedle cinema karante vich 25 September 2026 nu.
6: पहला मैंने अंग्रेजी बोल के दिखा
7: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली ही हैव फोर लेग टू ईयर टू आई वेरी गुड शी वेरी फास्ट काओ
6: हूँ मेरी जेठानी नु पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ गई
8: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो
9: ना पुत इंसान नु परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है
10: चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
5: टुट पैणी इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नु
6: है पुत पहला मैंने अंग्रेजी बोल के दिखा
7: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली ही हैव फोर लेग टू ईयर टू आई वेरी गुड शी वेरी फास्ट काओ
6: हूँ मेरी जेठानी नु पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ गई
8: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो
9: ना पुत इंसान नु परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है

0: नहीं
1: जे खादे ने का
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: खिचिया ने का हुंदा है।
0: हाँ
1: ओके ये यार औखा वा, मैनू हिंट दो तुसीं। छुट्टियां च नाल लेके गए हो?
0: नेरे चलाई दिया
1: अन्हेरे च चलाई दिया। टिंग लिंग लिंग लिंग लिंग लिंग लिंग वो तो मैनू लग गया पता
0: मेरी मेरी तेनू पता है लगना
1: है। फिर भी नहीं लगना?
0: ना
1: ये यार सारे दी फेवरेट कैंडल।
0: हाँ जी
1: ये तो गुरजीत आंटी झट बुझ लेंदे आ।
0: अंकल नो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी डॉलर द फाइन गुजीत अंकल नो ते इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी डॉलर द फाइन रंजोत अंकल नो
1: मैनू कदे ली, मैं कल्ला आया हूं अज।
0: नहीं तुई तो तुई कंप्यूटर वाल देखिया तनु
1: नहीं यार,
0: क्या ही
1: अपनी
0: नहीं देखना तनु
1: अपनी डील हुई ही भी जिस दिन मैं कल्ला आऊंगा उस दिन।
0: नहीं
1: नहीं
0: मैं तेन क्लू भी देता सी फिर
1: आते मैं बुझ
0: भी
1: ते मैं बुझ लिया ना।
0: पर उन्हें दी हेल्प लेके बुझे
1: ओ
0: तुई
1: नहीं, मेरे पहला दिमाग च आ गया ही, वो ते रोज कहिंदे कैंडल, मैं तां क्या ही।
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं किया थे तुसी
1: नहीं
0: ना
1: ओ यार एक ते कब्बा बढ़ा दूं।
0: नहीं
1: हाँ
0: यार मैं आज डैडी फंगो हूँ जवान
1: ठीक है, थैंक यू बते,
0: थैंक यू हैव नाइस डे बाय
1: थैंक यू। तुसी करो पाई एंजॉय छुट्टियां ते आज दा दिन। ते नेक्स्ट साडे नाल ने युवराज, तुसी आउंदे रहो।
0: सत श्री अकाल अंकल जी
1: सत श्री अकाल युवराज जी, की हाल चाल है तुहाडे, किदां जा रहियां तुहाडियां छुट्टियां?
0: मेरी ठीक है पर मेनू मेरे मम्मी पापा मेनू घरे बैठाते मैं कितने जाके नहीं जाते
1: ओ यार ये तो बड़ी गलत गल है, तुहाडा कित्थे जाण नूं जी करदा?
0: जानू टाइम जोन जानू जी करदा
1: अच्छा तो
0: ते
1: लैके नहीं जाते हैं?
0: ट्रैम्पलिन पार्क
1: कमाल है,
0: ट्रैम्पलिन पार्क
1: कमाल है यार, लैके क्यों नहीं जाते? अगे तो लै जाते होंगे आ।
0: हां जी क्योंकि मेरे मम्मी पापा बिजी बिजी हो गए तो फिर मेनू भी मम्मी पापा ने काम कराना
1: ओए तो भैन ना चल जा कर, दो तो यशका नु आ गई गड्डी चलानी।
0: फिर मेरे कई बार ओ जानती नहीं क्योंकि ओ दी यूनी होंगी है तो फिर ओ कई बार शॉप ते भी बैठे दी है इसलिए ओ जा नहीं सकती ते
1: ओहो
0: उन्हों वधिया नहीं लगता ट्रैम्पलिन पार्क जाना
1: ओहो यार ये तो बड़ा कम खराब हो गया फिर। तुही फतेह ना चल जाना ही।
0: फिर मैं प्लान फिर मेरे पापा प्लान बना
1: अच्छा प्लान लेट बनया। ओके चलो कोई गल नहीं, मम्मी पापा बिजी होने हैं, फिर नेक्स्ट तुही वध चल जो,
0: हाँ जी
1: थोड़े जे वध पैसे अर्न कर लें दो उन्हां नूं, ते फिर तुही लम्मियां छुट्टियां ते चल जो हुण।
0: ओके हाँ
1: ठीक है, तुही
0: जी
1: डील कर लो उन्हां नाल।
0: ठीक है
1: चलो की सुनाओगे फिर?
0: मैं एक छोटा गाना सुनाऊं
1: गाना। ओके
0: बेबी नू बेस पसंद है फौजी नू लेज पसंद है एक मेरी घरवाली जी नू कलेश पसंद है
1: आ आ आ आ
0: ये
1: बस ओके
0: हाँ जी
1: ये कितों कढ़िया हो?
0: ये मम्मा ने दस्या
1: अच्छा मम्मा ने दस्या, ओहो मम्मा ने आपे दाता है।
0: हाँ जी
1: ओके थैंक यू
0: थैंक यू बाय हैव अ नाइस डे
1: थैंक यू युवराज। ते नेक्स्ट साडे नाल ने पई तवनीत एंड सिबलिंग। सत श्री अकाल तवनीत, क्या हाल है?
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: क्या आप सोलर की सर्विसिंग के लिए फोन करने के बजाय घर में आग लगने का जोखिम उठाएंगे? अपने सोलर पैनल्स को अच्छी स्थिति में रखकर आप बिजली के कारण घर में आग लगने के खतरे को टाल सकेंगे तथा और भी अधिक प्रभावशाली सिस्टम के लाभों का आनंद उठाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में 2 साल या उससे भी पहले से सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो जोखिम ना उठाएं, सोलर सुरक्षित रहें। लाइसेंस धारक ई ग्रेड इलेक्ट्रीशियन से अपने सोलर की सर्विसिंग करवाएं। और अधिक जानने के लिए energysafe.vic.gov.au पर जाएं। एनर्जी सेफ हमेशा। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
1: ਲਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਹੈ कि आपका बकाया टोल आपकी रफ्तार को धीमा करे, इसीलिए हमने NSW गवर्नमेंट के साथ मिलकर बकाया टोल प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब हम डाक की जगह समय रहते डिजिटल रिमाइंडर भेज रहे हैं। जो लोग आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है। जुर्माने का जोखिम न उठाएं, आज ही लिंट टैग अकाउंट खोलें और अपने बकाया टोल का जल्दी समाधान करें। अधिक जानकारी के लिए देखें linkt.com.au/nswtolls।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: On Roads Honors Campaign सिर्फ सीमित समय लई, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लई है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD on roads on us, conditions apply।
4: ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 3D ਇਲੂਮੀਨੇਟਿਡ ਸਾਈਨ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੁਇਕ ਸਾਈਨੇਜ ਨੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 4 to 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਲੋਇੰਗ ਸ਼ੌਪ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਰੈਪਸ ਤੱਕ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨੇਜ ਲੀਡਰਸ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ। ਕਾਲ 1300-151616, quicksignage.com.au।
5: ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
6: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
5: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
7: ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।
5: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਫ੍ਰੀ, ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 03-8385-7048 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।
8: ऑस्ट्रेलिया च अपना कर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्टगेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 to 1 लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 04947637000 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लैंडिंग।
9: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिक।
10: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
11: की होया
10: एथे, इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
11: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 04105305003
10: या 9077993
11: या ईमेल info@vyimmigration.com।
10: याद रखो 9077973।
11: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
10: हर कदम तुहाडे।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर्न मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा davidavis.com.in।
1: वाओ, तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tirefors.com.au।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
6: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
7: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
8: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
9: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ।